दर्शन देखनी मांगो तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा, हे बिनंती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने चेरे, धर्मा दे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखहु टल गुरु सेविया, एहन सह

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला पहला घर चौथा जिन किया तिन देखिया जग धंधड़ा लाया

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुख पक्षार असंख मोन लिवलाए तार

अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे गावह तोहनो पौण पाणी बैसंत्र गावह राजा धर्म द्वारे गावह चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे

गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जोग जोग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रत्नों पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले।

तिथै सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कट पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का वेहो धर्म ज्ञान खंड का वाख हो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश।

करजन मरण विहीन चक्र बकर फिर चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जाप पैजे जाप आदि देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्विश्वर च्यो स्वयं भवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरखा दे धर्म धाम सो भरम रहता भूत अलख अपे संग राग नारंग जा कै जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन याद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्वहंता सर्व तेन भेख सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंगर रेक परम वेद पुराण जा कह नेत भक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र नया वही बहुचित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गर्व उदार महिमा अपार आसने अपंग उपमा नंगन भव प्रकाश निजन साजान बाहु साहन साहु राजान राजपान आन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान कालन भूत अंग अपह भंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड वालिस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्व प्रणाड्य अंडन बाढ़ चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं नृनामे अकामे पुजंग प्रयाद छंद

न सत्रे न मित्रे न परमं न पित्रे न कर्मं न काये जन्म अजाय न चित्रे न मित्रे प्रेह पवित्रे प्रथिसे अदिसे अदृशे अकृशे भगवती छंद त्वे प्रसाद कहते के आशिज देसे गया भिज भेसे गया गंज कर में गया पंच पर में गया भिज लोक कह के आदित सुख कह के अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रवाहे के धर्म तो जा है के आशोक भरने के सर्वा भरने के जगत कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुभवन रूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग महीने के एक अधीन है के रोजी रिजा के रही मेरे हक के पाक भी ऐब है कि गैबुल गैब है क्या बोल गुना है कि साह अंशा है कि कारण को निंदे है कि रोजी ध्यान दे कि राज करहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है सर्वत्र पाल है सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है सर्वत्र राज है सर्वत्र सुख है सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है सर्वत्र प्राण है सर्वत्र देश है सर्वत्र पेश है सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है सर्वत्र पान है सर्वत्र मान है सर्वत्र इंद्र है सर्वत्र चंद्र है सर्वं कलीमे के परम फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्नुल वजू है तमामुल रुजू है हमें सुन सलाम में सली खदमुदाम में गनी मुल से कस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीन उल तमाम है रुजू उल निदान है हरी फुलाजी मेरे जाए यकीने अनेक उल तरंग है अपेद है अपंग है आजी जुड़ निवाज है गनी मुल के राज है निरोकत स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है।

सर्वंगता सर्वंगता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राण सर्वंगत्राण सर्वंगकर्म सर्वंगधर्म सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता प्रसावलक्षन्त्वे प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न दाते न माते न जाते न पाते न साकं सुरीके अमितो अमीके सदैवं प्रवाहे अजय है अजा है भगवती शंत्वै प्रसाद। के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है सुमसुल कलाम है के साहिब दिमाग है के

जगते सुरे ब्रह्मंड से खल खंड से परते पर है करुणा करहे अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजवा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खल कायक है विश्वंभर है।

जो नियमो निनराग नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं बेपूते सदा सचिदानंद सत्रम प्रणासी करी मुल्को निंदा समस्तुल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनी में हरियं करियं क्री मुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुक्ते सुयं पव सुपं सर्वदा सर्वजुक्ते

तीर्थ नान दया नमदान सुसंजम ने मन एक बसे कै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेखै पौन आहार जति जत तार सब ऐसो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिनु एक न लेखै शुद्ध सुपहा दुरंत दुबहा सुसा सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंखा ले ना लेंगे तोर अरीन मरोर मवास माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बर यार विचार हसार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान की मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब

ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पते अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पगते न जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न दे तरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बकते हान लगायो नाथ फिरे हो नियत सात समुद्रन

सुनै गुंगजो याहि सुरसना पावई, सुनै मूढ़ चतलाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्थ सहस फुन तीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया।

सुनर मुंडा ने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी चंद सब तू दो उपाय।

कि कर्म कमाया तुद शरीरा जातु जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया

अमृत शाड़ बिखे बिख खाई, माया मो परम पे भूले, सोत दारा स्यों प्रीत लगाए, एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत।

जिनकर उपदेश ज्ञान जिंदिया नेत्र जगत ने हालिया कसम छोट तुझ लगे डू बैसे बन जारिया सतगुरु है बोता विलकिन विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर

अखंड ब्रह्मांड पताल दीप रविया सब लोई, जिसे आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिसे आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचाए सोच न होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार। सहस सियाणपन लख हो हिता एक ना चलै नाल, किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड़ियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है।

जात पाहारा धीर सुनियारू एरन मत भेद हथियारू पाओ खलागन तपताओ भांडा पाहो अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिन कारू नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमिया पो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।